हेलो हेलो कॉलिंग बॉम्बे एक्स वाई ओ कॉलिंग बॉम्बे एक्स वाई ओ हांगकांग ड्रैगन स्पीकिंग हांगकांग ड्रैगन स्पीकिंग $100,000 HK फॉर इंडियाज इनविजिबल मैन कंफर्म ओवर।